0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 8 बज्यो।

अब त सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा सार

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले साँझको ठीक छ बज्यो।

0: पनि लिए आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कंप्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भाई पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी एलजी लाइफ्स गुड
1: यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्क को जो तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर।
2: अब बाँकी खबर। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले आर्थिक वर्ष 2082-83 मा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने 18192 सवारी चालक

0: पानी जीवन को आधार हो तर स्वच्छ पानी स्वस्थ जीवन को आधार। हिमालय ऑन टॉप लांगडांग हिमाल को स्वच्छ प्राकृतिक पानी अब तपाई को हाथ में। अंतरराष्ट्रीय स्तर को अत्याधुनिक प्रविधि प्रशोधित ऑन टॉप ब्रांड का पानी 500 देखि 900 मिलीलीटर का आकर्षक पेट बोतल में उपलब्ध छ। थप जानकारी का लागि हिमालय स्प्रिंग वाटर प्राली नया बानेश्वर काठमांडू फोन 4781171 4780724 व himalayswater.com.np लग इन कर।
1: मार्बल को पाइप जलान गयो घर भन्नुपर्छ एकदम ठीक है कुरा मिला।
2: नमस्कार
1: अनि घर सर बेच्नु छोडेर यतातिर कता नि
2: यो त साइड जब दाई यो चाहिँ मेन जाउँ न।
1: यो मेरो छोरा विदेशबाट आको नयाँ घर बनाएको पाइप किन्न आको।
2: सामान राम्रो छ ढुक्क हुनुहोस्।
1: थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको।
3: विदेशमा पनि फ्लोगार्ड र डेट फ्री प्रडक्ट नै युज हुन्छ
1: त्यही भएर गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्द नाम
2: मार्बल।
3: अनि पाइप फिटिङको लागि मार्बलकै सल्भेन्ट सिमेन्ट राखिदिनुहोस् है।
1: सुरक्षा घरको
2: साथ जीवनदार।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास
1: 99.4 रेडियो थाहा संचार स्टुडियो टाइम
0: इट्स 10 p.m.

चुपचाप देखता, उजड़ा हुआ सा वो घर चुपचाप देखता, हाथों में सबके खंजर।